ने नए नए मकान थे, कई घरों में ऊंट थे, कई घरों में बकरियां, पक रहा था कुछ जहां पे जल रही थी लकड़ियां। इतने में अजां हुई तो रंगटे खड़े हुए, दिल के जैसे खुल गए हूँ ताले सब पड़े हुए। वो आसमां का राग था, वो दावत बिलाल थी, मेरे लिए दावत विसाल व जमाल थी। धो लिया नहा के मैंने वजू भी बना लिया, नस्बत हुजूर में ऊद भी लगा लिया। घर से हम निकल पड़े सहाबिय रसूल के, जा रहे थे सभी सिमत मस्जिद रसूल के। वो धड़कने अजीब थी, वो कपकपी कमाल थी, कि आँख अश्क बार थी, सरापाए मलाल थी। रूह थी के दीद की तड़प तड़प तड़प तड़प, दिल मेरा धड़क धड़क धड़क धड़क धड़क धड़क। हर कदम पे घट रहा था फासला हुजूर से, हर कदम पे घट रहा था फासला हुजूर से। खुदा करे हमें भी वो सादते नसीब हों, सलाम पढ़ते पढ़ते सामने हुजूर हों। यही है आरजू हमारी, यही दिल की इल्तजा, मदीने में निकले सांस मदीने में रूह हो। प्यारे सामीन, ये महफ़िल सिर्फ हमारी नहीं, ये आप सबकी महफ़िल है। आप जहाँ कहीं भी हैं, घर में, गाड़ी में, काम पर, या अपने अलहाना के साथ, हमें ज़रूर बताइए आप कहाँ से सुन रहे हैं और कौन सी नात आपके दिल के बहुत करीब है। अभी आपकी समातों की नज़र ए मेरे मौला, सुन मेरी दुआ। सुनते रहिए इंस्पायर FM 105.1।

0: From the studios of Inspire FM, the time is now 3 o'clock.
1: From the heart of Bedfordshire in Luton on 105.1 FM, this is Inspire FM News.
2: This is the national and international news today, Thursday, 15th of May, for Inspire FM, read by Shaheen Mirza. CIA chief visits Cuba as energy crisis worsens. Burnham to attempt return to Parliament as Starmer Amai tells BBC of dreadful week. Trump and Xi conclude very successful talks in Beijing, but no deals announced. Overseas fakers using AI videos to push a narrative of UK decline, BBC finds. 5 Italians die during a cave scuba dive in Maldives. British Gas pays £20 million over prepayment meter force-fitting scandal. Farage says 5 million gift a reward for Brexit campaigning. And that concludes today's news roundup. Next, the Urdu news with Mukarram Abbas.
3: Inspire FM ki Urdu news ke saath, main hoon Mukarram Abbas. Sabse pehle aaj ki headlines par ek nazar. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर धमकी देते हुए कहा है कि अगर ईरान ने मुआहदा न किया तो उसे मुकम्मल तबाह कर दिया जाएगा। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि ईरान के मसले का कोई फौजी हल नहीं, ईरान वतन के दिफा के लिए लड़ने के लिए तैयार है। चीनी वजारत खारजा ने ईरान अमरीका जंग की सूरत हाल पर बयान में कहा है कि जल्द अज जल्द एक मुकम्मल और पायदार जंग बंदी होनी चाहिए। सामीन, ये थी इस वक्त तक की अपडेट्स। मजीद अपडेट्स के लिए सुनते रहिए इंस्पायर FM।
1: Always up to date with everything that's happening locally, nationally and internationally. This is Inspire FM.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Welcome to the Friday edition of the Kids Round Show here on Inspire 105.1 FM. And of course, mashallah, alhamdulillah, Juma Mubarak.

कोई उरूज दे ना जवाल दे, मुझे सिर्फ इतना कमाल दे। कोई उरूज दे ना जवाल दे, मुझे सिर्फ इतना कमाल दे। मुझे अपनी राह में डाल दे कि जमाना मेरी मसाल दे। तेरी रहमतों का नजूल हो, मुझे मेहनतों का सिला मिले। मुझे माल और जर की हवस नहीं, मुझे बस तू रिज़्क़े हलाल दे। तेरी रहमतों का नजूल हो, मुझे मेहनतों का सिला मिले। मुझे माल और जर की हवस नहीं, मुझे बस तू रिज़्क़े हलाल दे।

मोहब्बत की तमन्ना है तो फिर वो वसफ पैदा कर, मोहब्बत की तमन्ना है तो फिर वो वसफ पैदा कर, जहां से इश्क चाहता है वहां तक नाम पैदा कर। अगर सच्चा है मेरे इश्क में तो ऐ बनी आदम, अगर सच्चा है मेरे इश्क में तो ऐ बनी आदम, नगाहे इश्क पैदा कर, हुस्ने ज़र्फ पैदा कर, नगाहे इश्क पैदा कर, हुस्ने ज़र्फ पैदा कर, मैं तुझको

मैं तुझको तुझसे ज्यादा और सबसे ज्यादा चाहूंगा, मैं तुझको तुझसे ज्यादा और सबसे ज्यादा चाहूंगा, मगर शर्त यह है कि अपने अंदर मेरी जुस्तजू तो पैदा कर। अगर न बदलूं तेरी खातर हर चीज तो कहना, अगर न बदलूं तेरी खातर हर चीज तो कहना, तू अपने आप में पहले अंदाजे वफा तो पैदा कर। इसी पर इकबाल कहते हैं, मोहब्बत की तमन्ना है तो फिर वो वसफ पैदा कर, जहां से इश्क चाहता है वहां तक नाम पैदा कर।

मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, जो मिल गया इसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया इसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, मैं दिल को इस मकाम पे लाता चला गया।

कम हुआ है, अल्फाज का एहतराम भी कम हो गया। अल्फाज के इंतहाप में जरा भी एहतियात से काम नहीं लिया जाता और नतीजा यह है कि हर दिल जख्मी है, हर इंसान आजरदा है। हमारी जुबान तव तलवार की काट से कम नहीं सामीन। वो कहते हैं कि सच कड़वा नहीं होता, इसके बोलने का अंदाज कड़वा होता है। लेकिन बाज़ औक़ात सदाकत की जुबान भी इतनी तल्ख होती है कि बस खुदा की पनाह। कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बनने के उस चक्कर में आपकी इतनी दिल आजारी कर जाते हैं, आपका दिल तोड़ जाते हैं, दिल बाश बाश काश काश हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि सच कड़वा नहीं होता, सच बोलने का अंदाज कड़वा होता है। मसलन अगर किसी इंसान की एक आंख जो है वो काम नहीं करती, तो ये जरूरी नहीं है कि इसके मुंह पर ही इसको काना कह दिया जाए। हरचंद कि ये बात सच्ची है, सदाकत पर मबनी है, लेकिन ये एक रूडनेस है, एक बदतमीजी का मुजाहरा है। सदाकत का गैर मोहतात इजहार भी भाई से परेशानी हो सकता है, यानी कि बिला जरूरत जो सच है वो भी फसाद होता है। यानी कि एक दफा एक बादशाह ने एक 10 शनास को, यानी कि उस वक्त वो हाथ देखते थे, उस 17 शनास जिसे हम कहते हैं, इंसान को बुलाया, इससे अपना हवाल पूछा। मंजम ने हिसाब लगाया, जाचा बनाया और बादशाह को इतला दी कि जहां पना आपके सब अजीज आपके सामने मर जाएंगे। बादशाह इतनी बुरी खबर पर परेशान हुआ, उसे गुस्सा आ गया कि मंजम को क्या खबर दी है, इस मंजम ने क्या कह डाला है। इसने इस मंजम को गिरफ्तार करा दिया और सल्तनत में मनादी करा दी गई। पुकारा गया कि कोई और मंजम जो है वो बादशाह के लिए हिसाब लगाए। एक आदमी हाजिर हुआ, उसने जायचा बनाया, हिसाब लगाया और कहा, जहां बना आपकी उम्र तवील है, आप अपने सब अजीजों से ज्यादा उम्र पाएंगे। बादशाह खुश हो गया, बोला, मांग क्या मांगता है। मंजम ने कहा, जहां बना बस मेरे उस्ताद को रहा कर दे। सुल्तान ने वजाहत चाही, यानी कि बादशाह ने वजाहत चाही, तो मंजम ने कहा, गिरफ्तार मंजम मेरा उस्ताद है, उसने भी वही कुछ बताया जो मैंने बताया, लेकिन वो अल्फाज के इंतहाब में मोहतात ना हो सका। आप अजीजों से ज्यादा उम्र पाए या आपके अजीज आपसे पहले मर जाए, बात एक ही है, लेकिन अदायगी मुख्तलिफ है। और यही चीज अहम है कि हम अल्फाज को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। जितने भी अल्फाज होते हैं, लफ्ज हैं, वो महकते गुलाब की तरह होते हैं। सामीन, अपने लहजे के फर्क से इन्हें तलवार मत बनाइए प्लीज। अल्फाज में ये भी बड़े खानदान रखते हैं, अल्फाज भी खानदान रखते हैं। सामीन, आप कसीदे के जो, यानी कि वो नज्म में जब किसी की तारीफ हो उसको हम कसीदा कहते हैं, कसीदे के अल्फाज और होते हैं और मरसिए के और, यानी कि मरसिए में आप, पता है आपको कि मुर्दे के औसाफ शुदाए करबला में जैसे मसाइल, यानी कि इसमें शुदाए करबला के जो वो बयान किया जाता है इसको मरसिया कहेंगे, और कसीदा वो है जिसमें किसी इस ऐसी जो नज़म है जिसमें किसी की तारीफ हो। और इसी तरह तनकीद के अल्फाज और होते हैं और तौसीफ के और होते हैं, यानी जिसमें किसी वसफ की, किसी खूबी बयान की गई हो। इसी तरह रज़मियाँ, यानी कि जंगी दास्तानें और इश्किया, यानी कि और इस तरह गज़ल के अल्फाज और होते हैं, मसनवी के अल्फाज और होते हैं, तनकीद के, तौसीफ के, रज़मियाँ और इश्क, गज़ल के अल्फाज और हैं, मसनवी के और हैं। क्या ये बात जो है ये समझने की ज़रूरत नहीं है कि शराफत के अल्फाज कौन से। बदमजाज होना इतना ख़तरनाक नहीं जितना बदतमीज़ हो जाना, क्योंकि बदतमीज़ इंसान जो है, बदतमीज़ आदमी अल्फाज के गलत इस्तेमाल का मुजरम भी है। सामी, अल्फाज के सही इस्तेमाल की तौफीक नियामत है, ये नियामत भी कम इंसानों को नसीब होती है। अल्फाज से माहौल को खुशगवार बनाने का काम लिया जाए तो बड़ी बात है। खाली अल्फाज निगलने, अल्फाज उगलने से कोई मसला हल नहीं होता। कभी कभी हम स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने आप को बनाने के लिए

0: اهدنا الصراط المستقيم. اس کو سمجھنے کے لیے اس کا میں صرف ابھی آپ کو انٹروڈکشن دوں گا پھر آپ کو بریک دوں گا. اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال سمجھ لیں. میں نے کل آپ کو ایک عجیب سی مثال دی تھی. فرض کریں کہ آپ میرے پاس آ کے کہیں آج کے بعد نعمان تم میرے غلام ہو. میں کہوں چلو ٹھیک ہے صحیح ہے. اب فرض کریں آپ نے کہا میں غلام ہوں, میں نے قبول کر لیا اور پھر میں بیٹھا ہوں آپ کے ساتھ صوفے پہ آدھا گھنٹہ, بیس منٹ, چالیس منٹ, آپ نے کچھ کہا ہی نہیں. پھر میں کہوں اچھا غلام تو میں ہوں, کچھ کروانا ہے؟ اگر میرا جو مالک ہے وہ کچھ کہے گا نہیں کہ جاؤ گھاس کاٹو, گھر صاف کرو, کھانا پکاؤ, جب تک وہ کچھ کہے گا نہیں تو وہ مالک کیسا ہوا؟ کیونکہ اگر مالک کچھ کہے نہیں تو میں نے کیا کرنا ہے؟ اپنی مرضی. اس کے کہے بغیر اس کے مالک ہونے کا, اس کے رب ہونے کا ناطا پورا ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ یہ ایک رشتہ ہے نا, مالک اور رب اور عبد. رب جب تک ہدایات نہیں دے گا, انسٹرکشن نہیں دے گا, احکام نہیں دے گا, کہے گا یہ کرو یہ نہ کرو, یہ اس وقت کرو یہ ایسے کرو, اس چیز کو سنو, اس چیز پہ غور کرو, جب تک وہ یہ نہیں دے گا تو پھر رب صرف کہنے کا ہو گیا. میں نے مان تو لیا کہ وہ رب ہے لیکن پریکٹیکلی کچھ ہو نہیں رہا. یہ بھی ہوتا ہے, میں نے یہ چیز وہاں یو ایس میں تو بہت کم دیکھی, مسلمان کنٹریز میں بہت زیادہ دیکھی. ہمارے یہاں ٹائٹلز بہت ملتے ہیں جن سے کچھ ہوتا نہیں ہے. تو مجھے فلانے پروجیکٹ کا ڈائریکٹر بنا دیا یا ایڈوائزر بنا دیا, یا ایک میں بینا کے ساتھ ایک یونیورسٹی تھی, ملک کا نام میں نہیں لوں گا, انہوں نے ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کی, ہماری یونیورسٹی کا بینا انسٹیٹیوٹ کے ساتھ بہت تعاون ہے. دس سال پہلے کی بات ہے, کچھ بھی نہیں کیا ہم نے, لیکن ایک سرٹیفکیٹ ہے, وہ تعاون ہے. یعنی کہنے کو تو ایک رشتہ ہے لیکن پریکٹیکلی کچھ ہے کہ نہیں؟ نتھنگ, کہنے کی بات ہے بس. اور لیکن وہ جو ہاتھ شیک کرتے ہوئے فوٹو لینا بہت ضروری ہے. واہ, بڑے مزے کے ہینڈ شیکس ہوتے ہیں یہاں. آپ صرف ہاتھ نہیں ملاتے, کہتے ہیں پھر پکڑتے ہیں پھر ایسے دیکھتے ہیں, کیونکہ اس کا اصل مقصد ہاتھ ملانا نہیں ہوتا, ہاتھ ملانے کا ریکارڈ ہونا ہوتا ہے جس کو فریم کرنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر اپنے آپ کو رب کہا ہے, رب کہا ہے, تو رب ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے بندے کو بتائے میرا بندہ ہونے کے ناطے تم کیا کرو گے. اگر وہ بتائے گا نہیں تو رب کس بات کا ہوا پھر وہ؟ تو کیونکہ ہم نے ابھی خود ہی کہا نا کہ ہم اب بننے کو تیار ہیں, ایاک نعبد, ہم آپ کی مدد مانگ رہے ہیں, تو ہم نے پہلی مدد کیا مانگی؟ اے دینا, ہمیں ہدایت دیں, ہمیں بتائیں ہم کیا کریں. اچھا اب تو ہو گئے لیکن ہمیں پتہ نہیں کرنا کیا ہے, کیسے کرنا ہے. اور اس اہتنا میں دو پہلو آ گئے, دونوں ایاک نعبد سے بھی متعلق ہے, ایاک نستعین سے بھی متعلق ہے اہتنا. یعنی ہمیں ہدایت دیں کہ آپ کی مدد کیسے آئے گی دوسرے درجے میں, اور پہلی بات ہمیں ہدایت دیں ہم عبادت کیسے کریں, آپ کو خوش کیسے کریں. پرانے مذاہب میں پتہ کیا ہوتا تھا, جو بگڑی ہوئی شکل ہے اسلام کی, اسلام جب انبیاء لے کر آئے اور پھر آنے والی نسلیں اس کو بھول گئیں, خدا کو اگر خوش کرنا ہے نا تو اس کو کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا, وہ ایسے ہی نہیں خوش ہو جاتا. کوئی نہ کوئی بکری ذبح کر کے اس کا خون ڈالنا پڑے گا, کوئی نہ کوئی چڑھاوا چڑھانا پڑے گا, کوئی خاص کھانا بنا کے اس کے سامنے رکھنا پڑے گا. آپ دیکھیں گے مندروں میں اور جگہوں پہ کیا ہوتا ہے, آپ وہ کھانا لے کر آتے ہیں اور وہ سامنے پیش کرتے ہیں, یہ جی میں نے آپ کے لیے چاکلیٹ کیک بنایا ہے, یہ میں نے رکھا ہوا ہے, اب بس آپ میری یہ منت پوری کر دیں. جب تک اس خدا کو کچھ دو گے نہیں وہ آپ کو کچھ نہیں دے گا. اور یہ تمام مذاہب میں, یہاں تک کہ کچھ مذاہب میں تو اتنا ایکسٹریم تھا کہ جنگ ہونے والی ہے اور ہم جیت نہیں سکتے جب تک فلانی جو دیوی ہے اس کی مدد نہیں آئے گی, اس دیوی کو خون کی ایک قربانی چاہیے, تو ہماری جو سب سے ینگ لڑکی ہے اس کو قربان کر کے پہاڑی سے پھینک دو پھر اس دیوی کی مدد آئے گی. اپنی بچیوں کو وہ ذبح کرتے تھے اس خدا کی مدد لینے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ ان کا خدا کے ساتھ رشتہ, اور خداؤں کے ساتھ اور دیویوں اور دیوتاؤں کے ساتھ جو رشتہ تھا نا, وہ تھا ایک تجارتی رشتہ.
1: ट्रांजैक्शनल, हम कुछ देंगे फिर वो कुछ हमें देगा।
0: फातिहा में शुरू से ही अल्लाह ताला ने हमसे कुछ मांगा, पहले अपनी नेमतें बताएं।
1: अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमने कुछ किया कि उसने किया है,
0: उसने हम की मुस्तहिक चीजें की हैं खुद।
1: फिर उसके बाद अर रहमान अर रहीम, हमने कुछ किया है भी कि वही कर रहा है,
0: वही कर रहा है। यानी शुरू से ही हमारे किए बगैर हमें दिया जा रहा है, दिया जा रहा है, दिया जा रहा है, दिया जा रहा है। अब हमें कुछ शर्म आई, हमने कहा मेरे रब हम क्या करें,
1: आपने इतना कुछ कर दिया, अब हमसे भी तो कुछ करवा लें,
0: हमारे नाम क्या खिदमत है। और वो क्या है, एहदिना
1: एहदिना, हमें कुछ तो कह दें।
0: आप मुझे ये बताएं, हम जितना भी कर दें,
1: अल्लाह ताला जो हमारे लिए करते हैं उसका मुकाबला किया जा सकता है
0: ना? तो ये एहदिना में भी जो अल्लाह ताला हम से जो हम हिदायत मांग रहे हैं ना, वो असल में अल्लाह ताला को पहचानने के बाद कम अज़ कम हमारे रब हम इस बात का इतराफ़ करते हैं कि हम आपका कभी हक तो अदा कर नहीं सकते, लेकिन अगर कोई छोटी मोटी ऐसी चीज़ है जो हम अगर पूरी कर दें तो आप हमसे राज़ी हो जाएं, आप हमारी इबादत कबूल कर लें, तो वो बता दें वो क्या होगी। यह है एहदिना। और फिर एहदिना के अंदर अगर कहा होता मुझे हिदायत दे दें, एहदिनी एहदिनी अस्सिरातुल मुस्तकीम, लेकिन हमने एहदिनी नहीं कहा, क्या कहा है,
1: एहदिना।
0: अच्छा, शुरू में जब हम्द की थी ना, जब मैं अल्लाह की हम्द करता हूँ दिल से, तो मैं आपके बारे में नहीं सोच रहा होता, किसके बारे में सोच रहा होता हूँ,
1: अपने बारे में।
0: जब मैं अल्लाह के बारे में कहता हूँ अर रहमान अर रहीम, अल्लाह की जो मोहब्बत है उसका मेरा मेरे लिए ख्याल है, किसके बारे में सोच रहा होता हूँ, अपने बारे में, इनफरादी बात है। मालिक यौमिद्दीन, मुझे आपकी फिक्र होती है, अपनी फिक्र होती है, अपनी फिक्र होती है। अभी तक जो सारी बात हो रही थी वो फर्द की थी, मेरी थी, तो यहां तक जो बात पहुंची, तो मुझे कहना क्या चाहिए था, तवक्को क्या थी, मुझे हिदायत दें। अभी तो बात, हर बात का इशारा मेरी तरफ वापस जा रहा है, मैं रब, मैं अब्द हूं, लेकिन इबादत की और हिदायत की जो तलब हमने की है वो इकट्ठे की है। इसमें भी एक बात की तरफ इशारा है कि ये हिदायत अकेला इंसान नहीं कर सकता, अकेले इंसान के लिए बहुत मुश्किल है, उसको सपोर्ट की ज़रूरत है, उसको किसी ना किसी का सहारा चाहिए। हमें इकट्ठे हिदायत दें। और इसमें एक खुद गर्जी से भी निकाल दिया हमें, या अल्लाह मुझे हिदायत दे, बाकी भाड़ में जाए बस मैं और तू। नहीं नहीं नहीं, इसमें अल्लाह ताला ने हमें एक दूसरे की फ़िक्र करना भी सिखाई। अगर मेरे रब में इतनी रहमत है, इतनी मोहब्बत है, इतना ख्याल है, और उसने मुझे बनाया है, तो मेरे अंदर भी उसकी कुछ झलक तो आएगी ना, कि मुझे भी किसी और का ख्याल है, मुझे किसी और से भी मोहब्बत है। और जो चीज़ मैं अपने लिए इतनी बुरी तरह चाहता हूँ, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं चाहता, मैं सबके लिए चाहता हूँ। यह आखिरी जो जो तामुल है, इसके बाद मैं आपको ब्रेक देने लगा हूँ, ज़रा सोचना इसके बारे में। अगर इसका मफहूम आप वाकई समझे हैं, मुझे हिदायत देने कहा, हमें हिदायत दें कहा है, अगर इसको वाकई हम समझते हैं, इसका मतलब पता है क्या है, मुझे औरों के लिए क्या चीज़ चाहिए, जो हिदायत मुझे अपने लिए चाहिए, वही हिदायत मुझे उसके लिए चाहिए। और जिस नरमी से और जिस नरम दिल से मैं अल्लाह ताला से हिदायत मांगता हूँ ना, उसी नरमी से मुझे किसी और के लिए भी हिदायत चाहिए। तो जब आप किसी को बड़ी नफरत से हिदायत देने की कोशिश करते हैं, जब आप ये लोग तो जहन्नमी है, जहन्नमी, इनको देखो काफिर हैं, ये काफिर, ये फलाने ऐसे हैं, ये फलाने मुशरिक हैं, ये फलाने उधर, जिस जो अल्फाज आप इस्तेमाल कर रहे हो, ये एहतना की रूह से सही है कि नहीं? अगर वाकई एहतना समझे हो, और कोई बहुत ही गलत रास्ते पर है, बहुत ही गलत रास्ते पर है, इस फातिहा के पढ़ने में आपने उसके खिलाफ दुआ की है कि उसके लिए दुआ की है? उसके लिए दुआ की है, उसके लिए। और जिस जज्बे से अपने लिए दुआ की है, उसी जज्बे से उसके लिए दुआ की है। ये नहीं कहा अल्लाह मुझे हिदायत दे और उनको भी दे दे फिर भी हाँ चले उनको भी थोड़ी बहुत। एक दिन हम सबको इकट्ठे एक जैसे जो मैं अपने लिए चाह रहा हूं और जिस तरीके से अपने लिए चाह रहा हूं उसी तरीके से किसी और के लिए भी चाह रहा हूं। हमारा आजकल क्योंकि अब सोशल मीडिया का दौर है और ऐसा दौर इंसानियत पे गुजर रहा है कि हम एक दूसरे के अफकार को, एक दूसरे की बातों को अब दुनिया के हर कोने में इस तरह सुन सकते हैं जैसे पहले कभी नहीं सुन सकते थे। इसी तरह इस्लाम और इस्लाम से मुतालिक जो बातचीत हो रही है वो अब जिस लेवल पर हो रही है और जितनी ज़्यादा हो रही है पहले कभी नहीं हो सकती थी, राइट। हर तरह के लोग हर तरह की बात इस्लाम के बारे में भी कर रहे हैं, आपको मालूम है। लेकिन एक जायज़ा मेरा क्या है कि अक्सरियत बात जो इस्लाम के बारे में हम करते हैं ना, वो हम किसी और की तनकीद करते हैं। अक्सरियत ये गलत इसलिए है, फलाना गलत इसलिए है, इसकी बात इसलिए नहीं सुनो, इसको इस तरह गलत साबित करूँगा, इसकी इस तरह धज्जियाँ उड़ाऊँगा। और फिर वो जवाब में क्या कहता है, अच्छा मैं गलत हूँ, मेरी वीडियो देखना कि तुम कितने गलत हो। और एक दूसरे की गलतियाँ, और ये दोनों फिर गलत वीडियो, एक दूसरे की गलतियाँ वीडियो रिलीज़ करने के बाद फिर नमाज का टाइम होता है और दोनों इकट्ठे खड़े होकर कहते हैं अपने अपने घरों में इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हयात का मजाक नहीं बना लिया हमने? और ये कोई बहुत गहरी तालीम है जो बहुत बहुत कुरान पढ़ने के बाद कई सालों बाद जाके समझ में आएगी, तो पहले सफ़े पर है यार। ये तो जब आपने इस्लाम कबूल किया था तब से आपके जहन में ये बात आनी चाहिए थी कि मुझे बाकी इंसानियत की फिक्र है, मुझे उनको गलत साबित नहीं करना, मुझे उनके लिए भलाई चाहिए। और जो रहमत मुझे अल्लाह दे रहा है उसी रहमत का तकाजा है कि मैं लोगों के साथ भी रहम से, मोहब्बत से, इखलास से, खलूस से बात करूँ। और अगर मेरा वाकई किसी के साथ इख्तिलाफ़ है मुझे क्या करना चाहिए? मैं समझता हूँ कि वो बहुत बड़ी गुमराही में पड़ गया है, मुझे फिक्र है, क्या करूँ, वीडियो बनाऊँ उसके बारे में? अगर आपको किसी की फिक्र हो, अपने कज़न की फिक्र हो कि वो किसी गलत रास्ते पर चढ़ गया है, तो आप उसकी वीडियो बनाओगे कज़न की? मेरा कज़न जो है वो, मुझे लग रहा था कि वो शराब पीना शुरू कर दी उसने, तो मुझे उसकी बहुत फिक्र है और इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और उम्मीद है कि वो हिदायत के रास्ते पर आ जाएगा। अपलोड। या आपने उसके साथ मोहब्बत की है या उसके साथ नफरत की है? ये नफरत नहीं है। अगर वाकई उसकी फिक्र है तो क्या करते? उसके घर जाते, उसे गले लगाते, उसे साथ बिठाते, उसे कहते मेरे भाई हो तुम, क्या कर रहे हो, नहीं करो ऐसे, कब शुरू हुआ ये, आओ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, आओ मैं तुम्हें रिहेबिलिटेशन सेंटर लेकर जाता हूँ, किसी से बात नहीं करूँगा, ये तुम्हारे मेरे दरमियान है। और ये किस चीज़ का तकाजा है? मोहब्बत का। एक तरफ तो खुतबा हो रहा है इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन, सारे मोमिन आपस में भाई भाई हैं, और दूसरी तरफ अपने भाई के ऊपर वीडियो बन रही है। भाई से बात कभी की है? नहीं नहीं नहीं। और फिर दूसरी बात, बात भी करोगे ना, और कोई कहे कि नहीं मैं उससे खुद बात करूंगा, उन लोग कमेंट में भी लिखते हैं आप उससे खुद ही बात करें, हाँ मैं करूंगा बात उससे, वो बात करो, बात को रिकॉर्ड करके उसकी वीडियो बना के करो। दिस इज एहदिना नाउ, ये नया एहदिना है, इयाका नअबुदु व इयाका नस्तईन एहदिना। अगर मैं तो कहता हूं अगर मुसलमान फातिहा पे गौर कर लेना तो उम्मत की शक्ल बदल जाए, हमारा पूरा डिस्कोर्स बदल जाए, किस किस्म का हम मवाद तैयार करते हैं, कैसे हम बात करते हैं, हमारा उसलूब क्या होता है, हमारा एटीट्यूड क्या, सारा का सारा बदल जाए। और अभी हम इस आयत में दाखिल नहीं हुए, सिर्फ इसका मैं ताल्लुक दिखाना चाह रहा था पिछली बातों से। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि हमने अल्लाह से दावा किया ना कि हम इबादत करने को तैयार हैं और हम मदद चाह रहे हैं, तो कैसी मदद हो और कैसी इबादत करनी हो उसके लिए अल्लाह ताला हम सबको इकट्ठे अपनी हिदायत दें। ओके, दो सवाल थे, इसमें से एक मुझे याद आ रहा है इबादत के बारे में, इबादत के कॉन्सेप्ट के बारे में, इय्याका नअबुदु। क्योंकि इस आप सबको इल्म होगा कि जो हिदायत हमने मांगी है इस सूरत में उसका जवाब बाकी कुरान है, यानी उसके जवाब में अल्लाह ने हमें ये पूरी किताब दी है, तो इसका मतलब ये होगा कि इबादत, इसकी तमाम तालीमात को इबादत ही समझा जाएगा, और इसकी तालीमात में नमाज शामिल है, इसमें कोई शक नहीं, ज़कात शामिल है, इसमें कोई शक

0: चाहिए जो इसके साथ फिट करती है। तो सियाक से पता चलता है कि कौन से मायने को पहले दर्जे पे रखना चाहिए। ठीक है, खैर।
1: Subscribe now to the Begina YouTube channel to watch the rest of this series and more great content from Ustad Norman Ali Khan. Coming up next time on Akhri Mojza.
0: जिस तरीके से इंसान मांगता है ना, उससे पता चल जाता है उसको किसकी कितनी जरूरत है। आपके आपके बच्चे आपके पास आके कहते हैं मुझे 500 चाहिए, मुझे 1000 रुपये चाहिए। जिस तरीके से मांग रहा है, मांगने देने का दिल नहीं जाता। फिर आप बच्चे को तमीज सिखाते हैं कि पूछा का तमीज से पूछा जाता है, अदब से पूछा जाता है, और फिर आप नमाज पे खड़े हो कहते हैं अल्लाह अकबर। उसको तो तमीज सिखा दी कि मुझसे कैसे पूछते हैं, और जिस तरीके से हम अल्लाह से पूछते हैं। एक दिन सुना तो उस तक ही